0: बजे बजे चाकुते रेडियो ये बरी तो भाई मुझे भेजो रेडियो रे रेडियो मर्चन गिरी तमु गेरी समाचार खल खाई भाओ
1: हम जिन्हें हम ये बस हमले हम ये ध्यालो से भेजो
0: इबर थाली दे सेवाग्रही मरकरी नेपाली कांग्रेस सभा केन्द्रीय सदस्य री लमजुम दकाले आरक्षण कोटर बे केन्द्रीय सदस्य में उम्मीदवार की बरी फ्लिउले जाना नेता मैं न्यू
2: के मैं रेडियो मर्चन गिरी दकाली दिन नई नानर बे आठ बजे खबर तमु के समाचार ये बरी आमित ओ

छ्यादलो रेडियो मर्सङ्गी 95 मेगाहर्ज दिएर इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङ्गी .org नानर 8 बजे खबर तमुक्यो मर्सङ्गी फेटेरी खुसीमाया तमुसोला तेवा म ऐश्वरी कर्बे फेटे।

लेहियो ख्यौरी मुई आफो नै हो बालिना मै लभा शिविर तैमु 100 भन्दा बढी किसान मैजी सेवा खिम संघीय सरकार दक्या तारखबा आर्थिक वर्षरी सुन्दरबजार नगरपालिका जी 11 लाख भन्दा कम अनुदान यो बताइमु दूध पोखरी न मुई बिचा 1,85,00,000 बढ़दी म दूध पोखरी रेडक्रस जी कृति कृधारा थुबकिन योजना बनीबा अन्तिम चरण जी थोनिमु दे प्याप्सन लमजुङ्गारी मुबा निजी स्कूल विद्यालय शिक्षक मध्ये कृ दिवसीय अभिमुखीकरण लैमु।

मध्यमतै म सरकारले सार्वजनिक लबना सतहरूले वित्तीय हस्तान्तरण विवरण अनुसार सुन्दर बजार चाहिँ तारखा आर्थिक वर्ष चलिभाव वर्षै तुलनारी 11 लाख रूपियाँ मै कमी अबतै म सुन्दर बजार नगरपालिका चाहिँ तारखा आर्थिक वर्ष 44 करोड़ 43 लाख रूपियाँ संघीय अनुदानी अबतै म चु नगरपालिका चाहिँ चलिभाव आर्थिक वर्ष 44 करोड़ 54 लाख रूपियाँ मै योलो सुन्दर बजार नगरपालिका चाहिँ युवा मुई नोरी तारखाबा आर्थिक वर्षेना लागि पुँजीगत प्रकृति भई 54 लाख दिएर चलिभा तर्फरी 43 करोड़ 89 लाख रूपियाँ युवा तैम सु मध्ये सुन्दर बजार जिक्री करोड़ 22 लाख रूपियाँ पुँजीगत प्रकृति भई समापूरक अनुदान युवा तस्मी विषय 1 करोड़ रूपियाँ चलिभा तर्फरी विशेष अनुदान युवा तैम सुन्दर बजार अरी तारखाबा आर्थिक वर्षेना लागि खबर मुई विषय 32 करोड़ 85 लाख रूपियाँ सशस्त्र अनुदान मु चु मध्ये सशस्त्र अनुदान तर्फरी 32 करोड़ 51 लाख रूपियाँ चलिभा दिएर 34 लाख रूपियाँ पुँजीगत प्रकृति भए म छलायौ तारखाबा आर्थिक वर्षरी सुन्दर बजारजी युवा समानीकरण अनुदान तर्फरी 10 करोड़ 33 लाख रूपियाँ मु विषय समानीकरण अनुदान तर्फरी के छी भएन आधारहरी 57 लाख रूपियाँ युवा तस्मी विषय 6 करोड़ 51 लाख सूत्ररी आधारित तैमरी अनुदान दिएर 3 करोड़ 25 लाख रूपियाँ न्यूनतम अनुदान युवा तैम निजीतिर आवासीय विद्यालय संस्था प्याप्सन लमजुङ्गारी आबद्ध मुभा शिक्षकमैते उत्प्रेरणामूलक अभिमुखीकरण तैम प्याप्सन लमजुङ्गाइन आयोजनारी जिल्लारी मुभा निजीतिर आवासीय विद्यालय री केलाई खब शिक्षक महिना लागि शैक्षिक उत्प्रेरणा देवालो अभिमुखीकरण तैम प्याप्सन लमजुङ्गारी अध्यक्ष ईश्वर पौडेलले अध्यक्षता दिएर जिल्ला समन्वय समिति लमजुङ्गारी प्रमुख पूर्णबहादुर तमुइन प्रमुख आतिथ्य तरी औपचारिक कार्यक्रम देवालो अभिमुखीकरण तल औपचारिक कार्यक्रम रि पैमरी प्रमुख अतिथि तमुधी सिकाइ निरन्तर चलिभ अभ्यास मूल्य बिनी शिक्षक मैदे पेशागत रूपले अध्यापन देवालय अध्ययन दे बिनी निरन्तर पिवरी जोड पी म खेवै बिनी खैमै बिनी तालिम दिएर औपचारिक शिक्षा मात्र प्राप्त ज्ञान आतन शिक्षक मैदे अनुभव दिएर अभ्यासी शिक्षा दे थप प्रभावकारी बनेवा जिसा प्रमुख तमुला भनाई म शिक्षा देवालय आफै नै अध्ययनै बिनी अध्ययन मात्रै आतन विद्यार्थीमै फिर खेमी बा फेरि आकर्षित तबा बिमारी प्रमुख अतिथि त मुजी गुणस्तरीय शिक्षा विकासै लागि तायौ शिक्षकै न के कर्तव्य र जिम्मेवारी तलपरि बा बिम लमजुङ्गारी दुधपोखरी नासपालिका छरी थुमाकी हुन सजिलो पहुँच तबा लमिबाई लागे नेपाल रेडकस सोसाइटी लमजुङजी सञ्चालनलाई खबर ती धारा कार्यक्रम अन्तिम चरणी थनी म नेपाल रेडकस सोसाइटी लमजुङजी वडा नम्बर 6 नोर्वे काटेश्वरतिर हाउ नासरी बे मिमैना लागि 45 वटा धारा भनी म या वैशाख महिना त क्या शुरू त भनेपछि लबरी अन्तिम चरणी थनीबा नेपाल रेडकस सोसाइटी भए कार्यक्रम अधिकृत गणेश कौलीजी पे म थेना अनुसार 15 लाख रूपियाँ मुइरी कृतिरी कृ धारा जोडिदिबा व्यवस्था मिलेबा दे बालो क्रे रिजर्भ ट्याङ्किङ यौलो कलेक्सन च्याम्बर बनेवा बिम छु आयोजनाजी नासथेमै दे तिथि रह्यो छ्याबा क्यु थुलियोबा ताई थुलियोबा बिम छलायो दुधपोखरी नासपालिको छर भयो उम्लिसोरा नासेर पिगोर नासरे बिनी 10 लाख रुपियाँ मुइरी यौलो कलेक्सन च्याम्बर दिएर क्रे रिजर्भ ट्याङ्की बनी बिम सु संरचनाजी ताराखाबा भविष्यरी थुबा क्यु छुबा प्रणाली थप व्यवस्थित दिएर दिगो बनेवा विश्वास कि मु नासथिमीजी 800 वर्ष त क्या यो थुबाक्यो अभाव समस्या तय खबरी तारा विषय छ्याबाक्यो थुनियो बा विश्वास कि म विशेषलाई मरी मुनिमे धेर ज्येष्ठ नागरिक मध्ये रिगु त क्या थुबाक्यो नोल परिवा बाध्यता हरदिया बा बिमो लमजुङ तुतपोखरी नासफा अलिकति चलिबा आर्थिक वर्षैन तुलनारी तारेखाबा वर्ष डिक्री करोड़भन्दा बढ़ी मुई यो बताइम संघीय सरकार चाहिँ सार्वजनिक लाभ नास त होइन वित्तीय हस्तान्तरण विवरण अनुसार दुधपोखरी नासफा अलिकति तारेखाबा आर्थिक वर्ष चलिबा आर्थिक वर्षरी तुलनारी 3 करोड़ 85 लाख रूपियाँ मुई बढ़ी यो बताइम दुधपोखरी नासपालिका चाहिँ तारखाबा आर्थिक वर्षरी 26 करोड़ 70 लाख रूपियाँ संघीय अनुदान योसी मो विषय सुनगरपालिका चाहिँ चलिबा आर्थिक वर्षरी 24 करोड़ 85 लाख रूपियाँ यो बताइम दुधपोखरी नासपालिका चाहिँ यो मुई मध्येरी नोरी तारखाबा आर्थिक वर्षै लागि पुँजीगत 2 करोड़ 63 लाख दिएर चलिबा तर्फरी 24 करोड़ 7 लाख रूपियाँ मु चुमधेरी दुधपोखरी चाहिँ 2 करोड़ 33 लाख रूपियाँ पुँजीगत प्रकृति वे समापूरक अनुदान यो बताइम चुनाव सफापालिका आदि तारखा आर्थिक वर्षरी विशेष अनुदान विशेष शून्य

दूध पोखरी राजपाल गरी तारीखब आर्थिक वर्ष ऐन लागे खब मोही मध्यले 17 करोड़ 3 लाख रूपियाँ सशस्त्र अनुदान मोबिस सशस्त्र अनुदान तर्फरी 16 करोड़ 73 लाख रूपियाँ तली बधेर 30 लाख रूपियाँ पूंजीगत प्रकृति भए मोबिस अगर तारखबा आर्थिक वर्षले दूध पोखरी जी युवा समानीकरण अनुदान तर्फरी 7 करोड़ 34 लाख रूपियाँ समानीकरण अनुदान तर्फरी के छिवा आधारले 34 लाख रूपियाँ युवा तस्म विषय 3 करोड़ 75 लाख सूत्रैना आधारले अनुदान दिएर 3 करोड़ 25 लाख रूपियाँ न्यूनतम अनुदान युवा तैम विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल लमजुङैन अध्यक्ष रमराज खनिया छुन्दीम शनिबार विश्वरी छिमा महासंघैन चौथो जिल्ला अधिवेशनजी अध्यक्ष खनिया देवालो 15 सदस्यीय जिल्ला समिति सर्वसम्मत रूपले छुन्दीम महासंघ जिल्ला शाखाइन वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल अधिकारी उपाध्यक्ष सोमराज बराल रामप्रसाद पण्डित दिएर समावेशी तर्फरी विमला हिमाली चुन्दी म महासचिव रे मदन राज पौडेलको सदस्य रे पायल शर्मा दनाई सहसचिव रे अमृता घिमिरे धना दनाई दिएर सरोज कुमार दनाई सहको सदस्य रे शिवराज देवकोटा सदस्यमरी सीता घिमिरे गोविन्द सोती दिएर मन्दिर दनाई चुन्दी म महासंघ विधान अनुसार जिल्ला समिति 51 सदस्यीयसम्म टिवा व्यवस्था मु अधिवेशनले 15 सदस्यीय निर्वाचित तब दिएर बाँकी क्षेत्र वर्ग भूगोल अनुसार ताई दिने समिति मारी पूरा लभा महासचिव कमल अधिकारी सी बीमो लमजुङ दूध पोखरी नाथपालिका छर्मुबा कलाबारी माध्यमिक विद्यालय र जिल्ला स्तरीय जुनियर युवा दिएर शिक्षक नायक गोष्ठी छिव नेपाल रेडको सोसाइटी लमजुङ आयोजन छिव गोष्ठी दिए जिल्लाभर विभिन्न विद्यालय जुनियर दिएर शिक्षक महिना सहभागिता मूलो गोष्ठी नोरी सहभागीमेझी विद्यालय प्राङ्गणरी प्राङ्गण तक्या घमर चोक समावेत सचेतनामूलक रयाली समेत प्रदर्शन ललो रयाली पछि लिसु विद्यालय प्राङ्गण र औपचारिक कार्यक्रम आयोजना ललो कार्यक्रम जुनियर युवा दिएर शिक्षक नायक गोष्ठी कलाबारी जुनियर संयोजक बीबीका तमुइना अध्यक्ष दर दिएर दूध पोखरी नासपालिका अध्यक्ष धनप्रसाद तमुइना प्रमुख अतिथि तरी तलो कार्यक्रमले प्राइमरी प्रमुख अतिथि तमुजी बिला विद्यालय स्तर त्यायो फ्रेन्सी मेदेर विद्यार्थी मेदे सामाजिक सेवा नेतृत्व विकास अनुशासन दिएर मानवीय सेवा गतिविधि सक्रिय बनेल खाई विषय खाँबा बने भए लागि चु कार्यक्रम प्रभावकारी तपाईँ मध्येजी विपद व्यवस्थापन प्राथमिक उपचार दिएर सामाजिक उत्तरदायित्व होइन विषय रि विद्यार्थी मध्ये सचेत बने भए लागि जुनियर रोडको सरकारले नै थेवा भूमिका मोबाइल बिम मर्सिङ फेरि तोखोबा लागि छ गयो फेरि छेउ भन्दा ओइसो फेरि देखे।

सर्व विभिन्न थ्योरी म आफै नै हो बालिन महिला बस्ती बिर्थे म 100 भन्दा बढी किसान मैत्री सेवा के म संघीय सरकार दखे तारखा आर्थिक वर्षरी सुन्दरबजार नगरपालिका 11 लाख अनुदान यो बताए म दूध पोखरीलाई मुई विषय 1,85,00,000 बढी दूध पोखरी री रेट कसै जे कृति कृधारा थुबा किन योजना अन्तिम चरण रे थनी म ते क्याप्सन लम्सुङ्गारी मुबा निजी विद्यालय शिक्षक मध्ये कृति दिन भई लागि अभिमुखीकरण नानर खबर तमुख मर्संगी फेटे तो खुबे लागे छिजी प्राविधिक चौधरी स्थित धन्यवाद पीमारी फेटे क्यांग खुशी माया तमसो बिदा कि रेडियो मर्संगी 95 मेगा हस्तेरा इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्संगी .org यदि दिलात ओ छ्याजलो।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: अंगुठीलाई दिने।
1: अह म यो बिहे गर्दिन।
2: हैन के हो बिहे किन नगर्ने?
1: म त न्यू गणपति ज्वेलरी सुनसादी पसलकै गरगहना भए मात्र बिहे गर्छु।
3: मलाई थाहा थियो बुहारीले।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्संग दे पिम 95 मेगाहर्ट्ज 95 मेगाहर्ट्ज

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी